पौड़िया पे ही करना की अगला पे ही ते तारी है। देखे किता अपना दर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी आई। जिसके जी प्राण है क्यों साहेब नो विसारी है। अपना

बल्ले हरे सचिया सैदा सैदा बल्ले हरे तो दिया गे अरे दास हमारी वाहिगुरु तो दिया गे अरे दास हमारी वाहिगुरु जियो पेंड सब तेरा जियो पेंड सब तेरा सचिया बादशाह जियो पेंड सब तेरा कहनानक सब तेरी वडियाई वाहिगुरु कहनानक सब तेरी वडियाई कोई ना वो ना गया ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह कोई ना वो ना जाने मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जान सर्व कला भरपूर दिसे जगतता नानक दास रदास खुद आगे मिलमता नानक दास।

माल राग कौशक संग लाई। मारू मस्त अंग में वारा, प्रबल चंड कौशक उभारा। खौ फड़ औ पहुरा नद गाए, अष्ट माल कौशक संग लाए। पुन आयो हिंडोल, पंच नार संग अष्ट सो।

या जंत्र हरि या मंत्र हरि सो तेज हरि या तंत्र हरि अजात हरि या पात हरि या मित्र हरि या मात हरि या रोग हरि या शोक हरि या भ्रम हरि या कर्म हरि।

अतेव हरि अछेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि। जलस्तु हि थलस्तु हि नदीस्तु हि नदस्तु हि वृक्षस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि। भजस्तु वं रटस्तु वं ठटस्तु वं जिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि मकातु हि। अभूतु हि अभतु हि अछूतु हि अछतु हि जतस्तु हि व्रतस्तु हि गतस्तु हि मतस्तु।

करता करीम सोई रस करहिम होई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही कि सेव सब एक गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देह राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पय अनेक को भ्रमाओ है देवता देव जच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन

जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कूट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कित कछ मछ कते उनको करत भज, कित अच वच हो सपच उठ जाहेंगे। कित नप बीच अच पच को करेंगे भज, कितक प्रत्यच हो।

ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग वासी कित मदीना मकानी वासी कित उदासी के फरमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे जड़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जाप सी घस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हारे गोरन मनाए हारे मडी मटली पहारे बीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित।

रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न परमं सदेवं सदा सिद्ध विरदं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभादनुक्तं प्रतापे अयुक्तं गच्छयाद विक्त यथापे विभुक्तं गच्छयाद अच्छे स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न परमं न सर्मं न साके न परमं न चर्मं न कर्मं न वाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आद रूपे कहूं कंज के मंज के बरम्बूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के वेश के धर्म धामे कहूं राज के।

अनुभव प्रकाश है अच्छा स्वरूप अद्वय अनासंतुट तेज अनुकुट भंडार दाता दुरंत सर्वं प्रकार अनुभूत तेज जगात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयालु अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योतपान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं बर्क ब्याद जय रोग शोक नहीं शत्रु साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो नांग अच्छा स्वरूप अक्षय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्द पाह देशन भ्रमंत कई उर्द मध्य पावक ज्वलंत कई सिमृत शास्त्र उचरंत वेद कई गोक काव कथत कतेब कई अग्न होत्र कई पवन हार कई कर्त कोट मृत को आहार कई कर्त साक पै पत्र भच नहीं तदब देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीरथ धर्म कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या बटंत कई कर्त पांत भांतन विचार नहीं नैकता से पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई कर्त पीर विद्या विचार नहीं तदब दास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धरम कही सिमृत शास्त्र तुचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ कर्त ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरद चार कहूँ कर्त जाच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ वर्ग दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ कर्त सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई दे नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जन निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदप तास पायत न अंत कई कर्त कूट विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं वर्त पान भो कर्त हो मर जग

ताप सर्व जलेर थमंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेत स्वरूप भेद अभ्यंगन खंड अभूत छेद छंगन काल अपाल दयाल सुंग जे ठट्यंग मेर आकाश भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंजे रचियंग देवा देव बरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जे रचियंग सर्व मकीन मका जे राग न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न शोक सुखंग जे रोग न शोक न भोग भयंग जे खेद न भेद न छेद छयंग जे जातन पातन मात पितंग जे रचियंग छत्री छत्र चितंग जे राग न रेख न रोग भणंग जे द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचे दस चार करी नव खंड सचे रज तामस तेज तेज गियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नकिंद नकंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद मुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड से

किन्नर जा छजुआन नर नार नपुंसक जाहे किए गण किन्नर जा छभुजंग दिए गज बाज रथादिक बांध गणंग भूत भवेख भवान तुआंग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भू मेर आकाश निवास चितंग रज रोज एकादश चंद्र पृतंग दुत चंद दिनी सहदीप दये जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाए दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे अंधूता भूता छूत पतंगन गाद ब्याद अनाद गतंगन खेद भेद छेद नरंग जे चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग नरंग नरे गुरुगंग जे सोगन भोगन जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाछे भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन बंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपद भेद पुराण समाजे वेद कतेव अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंध दो मुख ताप तप कई कल्पन लौ तब ताप कर नहीं नैक कृपा निध पान पर जय फोकट धर्म सवैत जह एक चित्त कृपा निध को जप है तिव्याभव सागर को तर है वह भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कूट प्रति इम वेद उचारत सार सुति जो वारस के चस के रस

अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेद है, न द्वी है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, वल्लीय रूप राग रंग है, न द्वैख है, न भेख है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न बात

रूप राग नारेह रंग न जन्म मरण विहीन आदनाद अगाद पुरक सोदरम करम प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद पुरक अपार हस्त कीट बिखे बसे सब ठौर मै निर्धार जात पात ना तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रम्यो।

जाच के नर माछ मानस मुर्ग उर्ग अपार नेत नेत पुकार हे शिव सक्रो मुखचार सर्व सपद पतार के दर जाप ही जह जाप आद देवा काद तेज अनाद मूर्त अताप जंत्र मंत्र न आवय कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे ओ बिराज धीराज राज प्रवीन जाच गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वैस नंगे बिखे बिराज शूद्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मध्य उर्द न भूमा का स्वरूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सपत पतार के तर जानिए जय जूत शेष नाम सहंस वर्ण है नेत पूर्ण होत सोद सोद हटे सभा सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त सके महा

ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हर हर थके सब नी पाइये तह पार नारद आदक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सफ़ कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके

दंडन असुर बेहंडन दुष्ट निकंदन आदि वृत्ते चरासुर मारण पति दो धारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो से मखासुर मर्दन रम्भक बर्दन छत्रशिते आसुरे बेहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूपते जंडासुर चंडन मुंड बेहंडन धूम्र विदंसन महक मथे दान प्रहार नरक निवारण अधम उदारण उर्दाधे जय जय हो से मखासुर मर्दन रम्भक बर्दन आदि वृत्ते डावरू डबंके बबरबंके बुजाफरंके तेज बरंगलंकुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत जमके भूखण दमके अत्सि जमके फुंक फनंग जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन रम्मक बर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकण तुजा फरंकण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विवरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन भूमा कासल ऊर्ध अधे दामनी प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आजन जोध ब्रह्माचन हृदय नराचन धर्म प्रते श्रोणंत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़क धरे जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघ ओघ निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ठ उबारण शुद्ध मते फणी अर्फुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अश प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हो से मैखा सुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़वी व्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गुण कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्टभुजे जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन परम विनाशन धरम दुजे भूंगुरु कमंकण ससृज मंगण फणी अर्भुंगारण धरम दुजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथाहे एक वृते जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन आद कुमार अकाद वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भूष वृष्ट बनासन मृत मथे कावरू कुमारे अधम उदारे नरक निवारे याद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण बितल तले जय जय हो से सब ठौर निवासन बाहे बताल आकाशन ले संकटे निवारण अधम उदारण तेज प्रकरखण दुंद तबे दुख दोग दहंती ज्वाल जयंती याद अनाद अगाध छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हो सी ससुर करखण आदि अनिल अगाध अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे।

बारज बिलोचन वृतन विमोचन सोज विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरना से शुभ्र सुभा से दुष्ट क्रसे चंचला प्रहंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन आद नाद का दुर्धन घंट का विराजे रुण सुन बाजे ब्रम्ब बाजे सुनत सुनंग कोकिल सुन लाजे किल बिग बाजे सुकू

चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर प्रत्यय धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुन संजक विधुंसन शोध मते जाल पाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सी मैंका सुर मर्दन आदि जुगाद अगाध गते खत्रियाण कतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते ब्रटलाज बिहंडन चुर दंडन तेज प्रचंडन आदि वृत्ते सुर नर प्रतिपारण पति दोधारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सी मैंका सुर मर्दन विश्व विधुंसन सृष्ट करे दामने प्रकाशे उन्तरना से ज्योत प्रकाशे अतुल बले दान वी प्रकरखण सर्वर वरखण दुष्ट प्रदरखण बितल तले अष्टायत बाहन बोलने बाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी मैंका सुर मर्दन आदनाथ अगाध वृत्ते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रदक्षण शुद्ध सरे सारंग

कारण करीली गर्भ गयीली ज्योत जदीली धुंद मते अष्टायत चमकन शस्त्र जमकन दामिंदम कण आद प्रते डुक डुकी दमंके बाघ बबंके भुजा फुरंके शुद्ध गते जय जय होसी मैं खासुर मर्दन आद चुकाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक भट्टे पापान बिहंडन दोष प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे पति दो धारे मुंड मथे जय जय ओसी मैं खा सुर मर्दन धूम्र विधुंसन आद कथे रक्ता सुर मर्दन चंड चक्रदन दान वर्दन बिडाल बधे सरधार बिबरखण दुर्जन धरखण अतुल अमरखण धरम तुझे धूमराज विधुंसन।

सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै कै लखाए।

अत के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासतरण के साल है दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया विरुद्ध के मटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्व न पार पावे गुला हिमालय जावे गोर कर तेजी गुण गावे तेरे नाम है जोग जोग साध पौन साधना कि तेग बांधे अरब के अरब या रथ तेरे नाम है फारा के फिरंगी माने कंधारी कुरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है मर टाम गेल तेरी मन सो तपस्या करे दीड़ वह तिलंगे पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दलवाली तेरी आज्ञा में चलत है रोह के रोहले माघ देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है गोखा गुन गावे चिन मचीन के शीस ने आवे तिपते थे आए दुख देह के दलत है जिन्हें तोहे जायो तिन्ह पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल स्यों फलत है देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साधा दीन कहियत है पाइय न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछ पहुचत ताहे जिड्ड की चिंगार पहले ही सुनियत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख जार किते कृष्ण अवतार किते राम कहियत है किते ससुरासी किते सूरज प्रकाश किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है किते महाधीन किते व्यास प्रवीन किते कुमेर कुलीन किते जश कहियत है करते हैं विचार पैन पूर्ण को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है पूर्ण अवतार निराधार है न पार अवार पाई है न पार पे अपार के बखानी है अद्वया बिनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनाशी के मानी है जंत्र हूँ न जात जा की बाप हूँ न माए ताकि पूर्ण प्रभा की सुछटा के अनमानी है तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है तेज हूँ कतार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता के बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपनों को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन करिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है के सत्रण के साल है के मित्रन को बोकत है के वृद्धता की बासी है जो हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है विश्व को वरण है के अपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार पर अवार हूँ को पार जग की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हबसी हलप जावे पूर्वी न पार पावे असत्य अनास है देवन के देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेव नाद अद्वया विनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मोहिया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया द्रुम चाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसे छीरा वध छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल द्री के कूल के हंसनी सिसी हारूम ही रसी हो सनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ का ढरूपा कैसी रामपुर सूरसी सुरंगाबाद नि के रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चंदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी पूर सी ससी सुरंगाबाद नि के सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलबा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकांसी बिलंदवाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है
फरासी फिरंगी फरासी सिके दुरंगी मकरान के प्रदंगी तेरे गीत गायत है। बकरी कंधारी गोर कखरी कर दे जचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूपो कमाऊ सर्व ठौर मैं विराज जहां।

हे निर्मला जी मान सतगुरु नितान के ताने उठा जी उठनी आसरा आसरे गुरु जी निवास जी आप जी दाज रुच कीर्तन करते हुए सबद बैठा जरूरी सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जिन्हें जिन्हें माए पवलो सबद बैठा जरूरी सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी सबना दिल खिलावनी चढ़ती कला बख्शनी गुरु नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबता सिखो सबद प्यारी ओ जन्म मरण किटे बुकुजल सदा सुखी नानक सिमरते कराम कलिमा।

पहला दुखदार स्कृप है जा सकता न होई तो करता करना में ना ही चाहो करे ना होई बल्लेगार एक द्रुतसिया तेरा अंतन जल किया रहा जात में है जोत जोत में जाता अकल

सो पुरख एक ओंकार सदगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब ध्यावहे सब ध्यावहे तुद जी हर सच्चे सर जनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ध्यावो संतह जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक।

ज्ञान मोह लेहो उबारे कभियो बाच बेंती चौपई हमरी करो हाथ दरछा पूरन होए चित की इच्छा तव चरनन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब है तुम घावो आप हाथ द मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सब है कर तारा मोर अच्छा निज कर द करिय सब बैरन को आज संगरिय पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारी तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस दुज जूं करिय रच्छा राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सुहाए प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा पप धरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रगासा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव कण को शिव गुण सुख दियो सतरण को पल मोह पद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चींटी ते कुंचर यस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घड़ घड़ के पट पट की जाने जावद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब दहे अपारा जब आकर्ख करत हों कब हों तुम मैं मिलत दे धर सब हों जेते बदन सृष्ट सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड़ कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का छीनत नहब आप आपनी बुध है जेती बरंत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्भुज खान बहर रच दीनी काहूं फूल राजा है बैठा काहूं सुमट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेच करो रण घाता जे अस दुज तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट नह है अरछा हुए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो
रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई दुष्ट छा छै सकै न कोई एक बार जिन

लहु उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अलधुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशद फल पावे सोई दुख नाथ सह ब्यापत कोई अड़िल्ला।

कह चौपाई सम सतरे सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा एत

अपार। आप हाथ दय राख मोहे मन क्रम बचन बिचार चौपई। मन आग्नय सह प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबहू नह ध्याऊ। कान सुनै पहचान न तिन सो लवलागी मोरी पग इनसो। महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंकर थारो। अपना जान करो रखवार बाह गए की लाज विचार। अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय। दे

जब आओ कि आओ निदान बने अत हीरन मैं तब जूझ मरों दोहरा। दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए अवर वासना नाहे प्रभ धर्म जुद के।

आँख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस पान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तोहे बखान।

दुख सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना। सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साची साहिबा क्या नाही घर तेरे, घर तां तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा

चक्रवर्ती चतार चक्रभुगते स्वयंभव सुमंग सर्वदा सुजुगते दुकालं परनासे दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते देख ते को फतेह नुसरत बेदरंग याप्तज आज नानक गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुरुष सहाय दरबार नेत्र दरबारा सच खंड वसै निरंकारा लक्ष्मी खड़े तुमरे दरबारा सर्व देवते।

फतेह। खुशियाँ दे दे करे गजावे, सो निहाल हो जावे। सत श्री अकाल गुरु बरकाल, देग तेग फतेह। गुरु पंथ खालसे जी दिनो दिन, चढ़दी कला रखनी सच्चे पातशाह जी महाराज।

पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करणे सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा जीवन सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा कल करोड़ सच्चे सबता।

0: मुसलमान की मेरी जल्दी करे
1: सोचा ने कार्य कार्य थोड़ी सोचा ने कार्य कार्य थोड़ी।

पौड़ी सेव की संतोखी जिनी सतु सच त्याया ओनी मंदै पैर न रखियो कर सुकृत रम कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित

0: अलमल खाई सिरछाई पाई मूर्ख अंधे पद गवाई बिन नावे किछ तहन पाई रह बिबाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए
1: आ संदेश तीने के

0: तगन तूट सपूत महला पहला।
1: तगना इंद्री तगन नारी पलके थुकवै नित दाड़ी। तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना खी। वित गा पिवत वड़ता गे औरा कुत लै पाड़ क्रेविया।

0: पवित्र पलाने कौन वे घर की हर सुवारे आन वे घर की हर सुवारे आन हे मन कुमारी अल्लाह को हे मन सारे अल्लाह के नाम में पर मुझे हर भजन ना ही ना ही ना ना भजन ना ही हर कर सारे एक भजन आए तो बनारे आ
1: जाए बहे मेरा जाए गुरु मेरा स्थान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान सुभान